0: सर्जन?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: कौन? मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

तारो कोई छनी मुसाफर रेणु रे दीज दने रो। अरे माता रो वरे बारो मास भेनो रो वरे छठी समास तन की तरिया तीन दिन रो वा फेर करे रे घरवास।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद गोतवाड़ा, तारो कोई छेनी रे भड़ा, तारे डीले प्रेरो खेच लिए कपड़ा। अरे आंग वाजे लग जा डपड़ा, दारो सुड़को मार ब्यान जल्दी पाड़ा, कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा।
1: बोल भाई।
0: अरे होटो आनान क्या मोटो, पीला कांटो काड़ा, पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: आया तानी हाँ। लेने को हरि नाम हाँ देने को अनदान चलने को निनता डूबने को विमान
1: बोल भाई बोल
0: जेन डूबदा से जुको मक्कार सरना करोड़ थटरण गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु
1: देख रे भैया
0: जेन जुको नानक्यापनो लेन जेन तुकारा महाराज कहो छ नानपन देगा देवा नानपन देगा

0: सदा क्यों नो छ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अबीज कर ले। अच्छी बातें सुझको आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो। प्रभु रामचंद्र भगवान रावण मारण पार दिनो लक्ष्मण मेलो। अरे लक्ष्मण राजनीति कूच लानू रे, तो लक्ष्मण ने तो को रावण क्यों? अरे सवार करो आज कर लन, आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो, आज कर लो।

0: न पच्चरे भा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने शरीरन का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आ रो था डॉक्टर को नाड़ी तपासन जुठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भा 105 डिग्री ताप चढ़गो रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री चढ़गो तो तू डगर जाई छी डगर जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जा रो चार नार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस काई करू साहेब 1000 रुपया दे दे
1: इन
0: दवा दारू ले जो
1: यानी
0: तू को पथ पाल खाटो खरो मत खोगन के दिनो ठीक से के ताणी 1000 रुपया दे आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तू तो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी तू हांडी उड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी उड़ा मुंडो को वेगो जो को वेगो ढगर को
1: हाँ।
0: ढगर को तू कहते केवड़ी व्यापारन को नहीं गयो
1: हाँ।
0: सारी ताणन खाड़ी कराला को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले छ।

0: के मिले छ।
1: आ
0: अरे भगवाने समझारो पत कुनसो छ
1: कुनसो छ
0: डाक्टर गनेरो पति वेगो खाटो खरो न खादो तो ताप डगदा छ।
1: हावा
0: डाक्टरे समझा ज्ञानी श्री भागवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबारो गाता नौनात वास्तानी मारे गोपाल कृष्णर 84 तोड़े र।
1: हावा
0: ओरे पायरी कर बेसेरो तो पत कुनसो छ
1: कुनसो छ।
0: अरे आपने घरेरी चटनी भाकरी छरला केरी बना दधा केरी।
1: हा
0: अरे दूसरे घरेरी सिरापुरी छरखा केरी।
1: हावा
0: अरे आपने घरेर मांद सुंदा नारा तने लागिरे लंगाए पार। अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे त्राजुन कांटो। अरे तोला उंदार कलियर बेटा नपन

0: घनमोट च कबीरदास महाराज के मोलो च। अरे कहने का कह दिया कितना बजाऊ ढोल,
1: वाह भाई वाह,
0: एक सुहासिनी तालाऊ का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरेर मालकण के दी पानी इंदर की
1: है
0: तो पानी की जन वो तो कोई दी भार ना भाईर ना थे दी बोल रहे भी है।
1: हाँ
0: तो तू काय करे छी मार मालकण दी कोई तू बोल रो छ
1: है
0: तन घर कुराड़ी आलाई छी वो न मा थार करू बर के
1: खरो खार।
0: अरे वो भाईर ना थे दी बोल जे पर तुझको पेटे में कणपला लाई छी
1: है
0: अन बेटा कान काटे कुटे कुतरा नहीं गली गली में हिजरा नहीं नन्नर नन्नर करतो हिंडे छी तो न ला छूटे नहीं। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी
1: हाँ।
0: गरीबेर मालकर शेर भोजाई लागत है
1: खरो
0: खार। मैं भी दूसरे कान काटे कुटे कुतरा नहीं लोकुर घर टुकर हो चू मारी भी मालकर जबरदस्त भेड़ गो वो रोई काम ओवड़ी चाड़ो मारो ये ओवड़ी चाड़ो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा श्रम नहीं आए। अपन मालकने इज्जत को तो मोट अन गरीबेर को तो नानकी काय बेटा। अरे कीड़ी थी ब्रह्मदेव इतनी इज्जत सारक छ कन केन काय।

0: अरे परपंच कर रे नेट का कति मत दकाद रे फाटका कामे माई काम हरी नाम रो गुटका पर हरी नाम रो गुटका छेनी रे
1: आओ रे
0: कति तो ई दाता ने हाट अंदर के दोई जोड़ा वाड़ा
1: हाँ।
0: तो काई करे छ मालखने अंदर से हाट करे ना आठ और हरोगार भ्या भान ले दा साठ वो मालकन काई करे रे आठ रुपया में काई हाट करे गी बागवाने कन का तो दादा ये वेंगन कतरा ना वो बागवान के जारी एक रुपया ना तो ऊपरे नहीं उतरा पाले जो बिचारी वो काने वेंगन रस एक रुपया में पाला होता वो और प्रेसी गी कन का तो काले भूर केला रस दादा ये कू यारी बारना ना तो ऊपर उतरा
1: देख रहे भैया
0: घरे लिया बेट बेटा धासन आओ यारी मार यारी आई मर माता आई छोना गज गटड़ी छचारन केड़ा दस वो छचार पड़े बदन छोलन खायन देख छो छोड़े रांगा का केड़ा को गटड़ी नवाला छ मुंडे साव घालेन के तो खार एकड़ी जा ऊपर ती सड़े का मातो जा छ बारनार केड़ा खाई छ खराई छ नीरलजम सदा सुखी आठ रुपया हाट कराई छ साठ रुपया रो दारू फेची नीरलजम सदा सुखी छ तू अरे तो मानस करो तो अक्कल छे नी ढोर करो तो लार पुतलो छे नी ई जलमा अपनो सेवटावलो का

0: आइटम काई लावा ये छटाक थे लाव जन आर दार खानो। अरे नीलगाम आटा पंचे 40 दारू छोड़ दे, आटा पंचे 40 रुपया रो एक किलो तेल आया कनक, एक धोवो तेल हांडी में खलाऊंगा ना के। अरे कालो फूर पानी खोरे गुलाबेर फूले ना तार बेले बेट बेट बटा रही है
1: खरोच खैर
0: मालकल गुलाबेर फूले ना ही रही है तारे ऊपर कर्ज कोनी व। अरे जोजार गले माय मंगलसूत्र भान मेलो चीज लाज छूटनू लागी है तो ना। अरे कांदी सोने दागिना गले में घाल द मालकन चम चम चम की तो तारो भगवान कल्याण करिए। अरे हिजड़ा रावला दूसरे तांडरी साउंड देखन बार सब दियाई घरेर मालकनर भूखे मारे तार सुगो पापी जगे में छेनी।

ताकते लेर माई मावली काई करे रे भा नू करता नहीं ऊंदा इनकी तो एक न दी बूंद पड़ते खमत यारी शेत पड़ गए छोरार कावली माई दीज बूंदेर माई हेट भगला तपरच फक्को वच कर जाच हरोगार पानी खान सत्तो पड़ रहे ची अन एक दारू तो छूटे नहीं तू मानस का अरे लार देख साधु संत काई कर गए मोती वालो सदा क्यों गोचो कोई मारे मनेर मकोनी करो कबीरदास गोरुबा काका सावता माली नरारी सोनार जनाबाई मीराबाई संसुकु भाई चौका मेला सजन कसाई निवृत्ति ज्ञानदेव सो पान मुक्ता बाई एकनाथ नामदेव तुकाराम कबीर कमाल रोजास अमार नरहरी सोनार गाड़गे बाबा कैकारी बाबा सुदगुरु स्वामी नामानंद बाबा नामदेव कीर्तन करी पुड़े नाचरे पांडुरंग हरी नाचता नाचता गलाला पितामर कबीर मने देवा पितामर आवर मुनेर मुके मायरो बोल छा अरे तू सामलो को तो तारो कल्याण वे जाए थोर संताचा महिमा थोर संताचा महिमा।

एकदम सदा सुखी काई के छ। अरे इने काम यानी बैठा हूं ना, अनाज को कीर्तन भजन करते डिग्री हिंडे छ, 10-12 रुपया ले ले छ। अंगू चलो जा, ऊ चलो जा, खोद के बैठा ना तो काम करके खड़ छ। अरे खोदे ना आए कौन तिरे, पांच अंगली बराबर छ नी, हम कते दी आए छ, हमें वैकुंठ वासी, हमें वैकुंठ वासी आलो यार।

0: सा
1: हाँ वाह
0: तो ना लकड़ी वोल रतो सुतारे समझानू सुतार छोलन बरोबर करे सा लोवा वोल रोकन केन कतो लवारे कन जानू छोलन वन उसको तपान कूटन बरोबर करे सा अरे तू वोला वागरोस तो बेटा कीर्तन भजन फूती प्राण सामना बरोबर सुधो वे जाई चे कन संगत करो रे सज्जन की बढ़त बढ़त बढ़त जाए संगत करे दुर्जन की तो घटत घटत नीचे आए संगत करी छेली गजकी मनमान फल खाए।

अरे हाथ जोड़ना नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे भगवान, एक नाम ले लो रे भगवान, रे भगवान साई वेदाय तमे ना। अरे कहीं पड़े नहीं रे, कहीं कम पड़े नहीं रे तुम्हारे जिनगानी ना।

0: अबा तू केस अरे माटी रोज गीत गायो बाहर कोनी गीत गायो बाहर तो को मैंने बुड़का बसा रेड सा अरे सामल कान भरन बाई कुछ को कहीं लागत सा
1: रोज खर्चा।

अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चालनाए सता। अरे कली अवगे माँ बनना की गीता। अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भार नितो सत वाले जाऊ तार। अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देवरो चरण रो पानी लाई तीनी देवे पर पानी छिटकाई। अरे तीनी रो तो बालक बनाई तीन हाथ तीन हुंडा धारण माता पाने घर हलाई।

0: माता तार पेट में दिन कर तार थट्टा को नहीं करूं ये वेद पुराने में से वाते सिद्ध को तन में क्यों
1: हाँ भाई
0: तारो देव कुण से वेंडी तारो देव स्वर्ग में से नहीं तारो देव पाताल में से नहीं तारो देव पुदी पुराने में से नहीं तारो देव कतस जो भाई पतिव्रता देवे पर तार सता पतिव्रता रो भाव तारो

सेवा सेवा कना कांदे पाड नाच कोनी क्यों रे जन्म दिवाली माता तोन में अनुसुया माता कुंसी देवें धुकेन की थी कोनी की काय की थी वो ब्रह्मा विष्णु महादेव मानव रो भाई दानव रो देव रो भाई मानव रो बाहरी बातें सामने आए तो वो रो तो बरोबर करस कू फेरस भाई बाहर अरे मारो माटी तो बाहर कू फेरस भाई लोग देवे मारसे ना दोरी फिर भी ते भौरियाला दोरी फिर भी ते भौरियाला बाई

0: बाईने डिलेम देवा आवच
1: हां
0: बाईने डिलेम देवा राय भगत भी खेलचन वोई खेलचा ठीक छ
1: करो खर्चा
0: अरे बाईर डिलेम देव कुआव रे भा सरपंचर बाई रायनी वाणी गुजर मारवाड़ी बाई डिलेम देवा आईनी ये सारी दाड़ो भाटा पारदाणी काल काबर वेरा आर दाड़े में अपना अंगुली खिरवाड़े डेले डिले में देव केवड़ी धरसारे बेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ये माया से फसायल से बाई जो को काई करे से बाई डिलेम देवा रो अरे हूं हां करी एक छोरा हेट बैठो तो वो कहीं की दो भाई डिलेम तो देव आरो लागो 550 रुपया क्रेम खसोड़ मिली छ उतरा पीसी काली दो को तो कला भाई कहीं कहे वालो छ के देतानी कन बैठो को छोरा खाएंगे तो घाल देनो पीसी हाथ में काड़े गयो भाई कहीं कच गब्बे सोन डाकने खाता गब्बे सोन मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना कहीं भी पाड़ेगे तो गब्बे रणो पण लबाड़ छ माया बड़ी कटूर छ काठ कली जो खावत छ अरे हकीम बिचारो कटकट दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: करूचे एकच वच साटा खोदू एकच वच धूड पाडू एकच वच मनदी करे याडी या करो हाँ। बेटा हाँ। तारो बरोबर करू बेटा तारो कल्याण करू बेटा तो डबल उणू बेटा वाया की दे जना ये माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की जना सात फेरा भरना यरो माटी हो अब ये डीलर माए आओगे जना ये गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाई दरवेजा है हाँ। खिलाड़ी कविता कुम फुकुम ये को टेम आओगे सा वो रे सारू तुको भगवान नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नहीं चौरिया चुका लो।

0: माटीर बाहर वा सामने कुण आओगे ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुसया घर आओगे अनेक निरंजन भिक्षा आए भाई आले अतिथा मुड़बर द्यावे मागे पुरे पहुन का तुकारा महाराज के उगोच करण केतानी भिक्षा भरला की याडी नूला कुलवाचो ढुंगली भिक्षा तार मायर कोथी मैं जी हुई जुगाल ठीक से गे माई पतिदेव अंतरदशी सुतो तो गड़बड़े थी कि काय के लागो काय गड़बड़ चाल रोच गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए छ मन काय केरे छ भुंगळी भिक्षा घाल केरे छ ऊ के लागो तारे माई वत चमत्कार तो करेल लगा नमस्कार म काय केरालो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाकी नाक नाकेर छे नी तो न पूछता मोटो खेल से तू उठ हेड़ती हेड़ती उठाड़ वठाड़न बसार देनी पगे पर मातो मिल देनी पग धोनो पानी पील दी तीनी देवे पर पानी मार देनी तीनी देवे रावड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे में हुंडा झला देनी पालनो हराती बेसकी केर जरे पर बेटी है वेंडी डीले माए तो कहीं कुर्सी देवे धोकिन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर मातो पटकले छी माटी कुम बोले छी माटी ती तो शुद्ध बोले मुंडो भरन बोल माटी एवडी धुनी धोकचन एवडी जुक माटी को बोलच धोळस मुंडे रा हरेगार जाबडे रा मुरिया मा खाईनी याडी पाडे नी हिरण काय मारसा मुंडो फेर जणीवी काय सारी तांडे लान ये न घाल दू काय सारी तांडे लान घाल दू के चिन धुनी पर मातो पटके छी धुनी पर मातो पटका लोई काले दवा खाने माई जर मीना बरो सुती तो नी याडी साईवे नी करण के भाई

0: नारद स्वामी चलोगो रे वो तो गिरजा साइत्रा लक्ष्मी कना
1: हा हा
0: ए वेंडी जावे ननका ननका छिचाकरण पाड़ मेरी झोली में जाना बलाला तुम्हारे पति देवे ना
1: खरोच खा
0: रे गिरजा साइत्रा लक्ष्मी आई रे अनुसुया माता कना ए जन्म देवाली चुकवे को हमारो पति दे दा हमें ना ले जा तुम्हारो पति ये बेटे ले जाओ वो के लागी प्रभु राम ले जामा बात खर्च मारो कालो तो न तारो काबरो मन डिगरा दो भूल पड़ जाए कुंकरिया ए जन्म देवाली माता तू चढ़गी हम हारगी हमारो पति हमने अंदर ए गिरजा इधर तारो भगवान शंकर ए साइत्रा इधर तारो ब्रह्मदेव ए लक्ष्मी इधर तारो विष्णु आशी धाटी महाराज होटो देखन लार देखन आगन हास अजी नानके नानके शिचार करना के तो काई क्रिया आगन के पर तो तीन ही वचन दे गए दत्तारो अवतार वे तानी मोहर गणेर माई जल में लीदे कोला प्रेम माई भिक्षा की दे घानगा प्रेम पांच मिनट बैस गए अनि निद्रा दुगा जी जुगो मोहर गणे न कर अपना खेल तमार वाई छात्री ताकन मारी जल में जड़ी माताम छ पर काई करू लागत

सेवा की दिरे संडलिया माता। अरे तीन दार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेव कने थी। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीन दार थमाई।

0: மாதிரி ஆத்திரைய பாரத காணும் தலவாரே தார் ஒரு மால கசோத்தே வேண்டி கோடேதி டாங்கே சனி குளிதி ஹாத் சனி கேளா பாசுரு து கோடியாளோ ரே கோடியாளோ वो कोड्याले ती वाया लागरो वो कोड्याले न काय करे प्रभु कर्म रेशा चुकावे चुकना बाण लागली रे जगजीवना हे कृष्णा मारे नसीबे मारो मारो मालक काळो रो आंधो रो लंगडो रो खुळो रो मारे नसीबे मसकन के काय करे ओल्डी बसार ताणी वो कोड्याले उंगळी घाल आणि पाणी छेटी मेल द आणि वो पाणी ने तीन पसी पिवा से बारह वर्ष दाडो सेवा की दी
1: वाह भाई वाह
0: बारह वर्ष सेवा की दिए दार बाटी नालती माई बेटी हाँ ये जो को बारह वर्ष पति देव बैठो तो वेशा ना मेरे बाई जो को वर गली माई जा रही थी उन्होंने देख ली तो अनि लंगड़ो खाई की दो गप से जो को सो गो मालकन बाटी माटी करता नहीं सांड लिया भाई आई ऊट पति देव बाटी खो खाऊ नहीं का खाए सुनी का खाऊ नहीं जो को वसंत ये ले वसंत देख अपने घरे मुंडा गए जो को मखना ही कौन दूटो तो आज एक भाई की बाई रूपवान सा वो बाई सौ मन ले जो तो मैं बाटी खाड़ो नहीं तो मैं मर जाओ बाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे कि नहीं चिरे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कूनी ती हाथ छेनी कोनी कुचू तो अत्रादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुणस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊँ सू बाटी खड़ा देनी आर दारे मौलत ले दी अन बाई धूं तानी काली दी अन बाईर घरे मुंडा अगर न मालन था कहीं करे लागू

0: गोपाला गोपाला प्यारे नंदलाला पर एक दाड़ू भाई काई की दी
1: हां
0: ई गोपाला गोपाला करे वाला कुण तक के ने वन पकड़ी दी काए छोरी काई कर री छी भाई ए काई कर री में कुछ ए मन वचन द एल वचन काई कर री छी ई देखे भाई मारे घरे मुंडा जे तू गीती के छे आर दाड़वे के पछ मारो मालक तो देख ली दो छ अन तू वो भाई साउंड लेगी तो ठीक नींद में फांसी खान मर जाऊं करे थे यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बे तो काई जल में देवाली माता गोरे ती टांगे छेनी कुणी ती हाथ छेनी केला नहीं पाथरो जेने मारो सोने सिर को कियो सोने श्री केरी तम भी काई करो पगू पड़न कुछ हाथ जोड़न कुछ तुम्हारे नसीबे ना आंदो मलो लंगड़ो मलो खुड़ो मलो आचो मलो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देवगण समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी बाज आए करण के तानी वो माटी ने जो वचन दिया उखेला भाई कहीं हरकत छे नहीं तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूनो आरो छो कू मेलू उखेला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ छ एक आनी टेमे ने फलाना कोडाओ घर जाओ को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकोवर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डिम घाले तानी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेलिया छ देव घणु गो गोपाल कृष्ण घणु खेलिया छ देव रंगारी रंगारी देव रंगारी रंगारी 16,108 नारी भोग

सवित्रा बाई सगाई करे सारू चार बीर चार लोग बोला बिगे वो तो नारद स्वामी आगो अन सत्यवान सावित्री ने कहे के ए बेंडी ये सत्यवाने थी तारो वाया मत मत मत का बारह महीना मर जाओ छे बेंडी अन तू तो को दार खून काढ़ी बारह महीना मर जाओ छे ठीक था मरगो तो मारे माई मारो पत जर खरो हुई तो मारे पति देर में उठा ली और मनीम कह दी गोल पानी वेगो बारह महीना बारह दाड़े तुनी और लारा खनाई जो लकड़ी निकी को नहीं वो दाड़ी लकड़ी लावा वो लकड़ी फोन आकर व्यसन निर्वाह चलावा एक दाड़ा अब इस पूर्णिमा से आद बड़े पूर्णिमा कर उन दाड़ा जखो निकलो सत्यवान निकलो उन दाड़ा मातराम सवित्रा की मत हरला रहा चू मते मत मत मत दाड़ी आई आज वर्ष जगो कोनाई कोनी आई आज गुआ ची कोनी पति दे माऊ चू मारा हट्टा त्रिपुरा ठीक से चले गए चले गए न पूर्णिमेर दाड़ो रह अत हट सा अत दे फाटा वे करेर माई एक फाटा उड़ेरो रह मारे झोलो सबको मरगो मरते खमात येम राजा लेतानी मायरो प्राण निकलो निकलो जना लारा लारा लारा लारगी होटो फरन देखो तो बाई चुजाओ ए छोरी काई मांगे ची मांगे तो मैं देन तैयार छू महाराज मार सासू ससुर आंदे छ मार सासू ससुर आंदे छ मार सासू सरेन आकी देनाक अतरी मांगनी तथास्तु